चौंकिया झंड भुंग जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवां।

त्या जप माली धन मलेचा खाई अंतर पूजा पड़े कते संजम तुरका पाई छोड़ीला पखंडा नाम लिया जाए त्रंदा महला पहला।

पौड़ी नान कंतना जब हरदा के बारा बार अपना शक्ति प्रकराय मार इतना गली जिंदगी एक चर से आहार आप प्राय करे आप हो कैसो करी पुकार नान को करना जिन किया फिर से करनी सा।

श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत श्री

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चकर चहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पीख को कह ना सकत केह।

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठे आसुहिया सावना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

रंग परंग अनेक न जापन करते बा जी अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला।

रंग प्रंग अनेक जापन करते बा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाए तुद कर माण महता ते जे अपने आप जा रे सर्ब कला पर पूर दिस।

वाय तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुध जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे जोज विडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबान। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई। तुद आपे भाव है सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मेर विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जानहै सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सरवरड पैले निवासा पानी पावक तिन्ह किया। पांक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्राणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਪ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब वैरण को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुज जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंत। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतर। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह वध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूप। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमंट भयो शंकर अकैठा। शीघ्री श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणघाता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काल, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बेसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनोह बसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरे घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री

अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां

गोर राम मेहंदियो, गोर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण। मूरत पंच परमान पुरख गोर अर्जन पिखो नैण। ज्यों जान हो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गनो असंख आवगण मेरिया। असंख आवगण खते फेरे, नित प्रत सद भूलिया। मोह मगन बिकराल माया, तो परसादी भूलिया। लोक करत विकार बिखड़े, प्रभ नेर हों ते नेरिया।

सुकह टल गोर सेवियन एहन सुसहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह सिर सहांदे जिस

सोरठ महला पांजवा सात गुर पूरे पाना तां जपिया नाम रमाना गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी।

आपकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर बला तेरे घर आनंद बधाई तो दिखार मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदिया के

परस करियो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरत गुरु सिर हथ धरियो। हम अवगुण परेक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाही। माया मोह परम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत, तेह मिलंत जमत्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीर्त की

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रेजन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेढे विडानी विस्माद।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सुइना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जी को जाने पे नानक ताका दास है सोई।

सगल पवन तारे, एक थे किए बिस्तारे, पूर रे ओ सर्व में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जन सब थारे, सगल को दाता एक लख मुरारे, आप ही तारन तारे, कुदरत है देखारे, बरन चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार सर्ब गुण।

0: दासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो।
1: सत सत हर सत सत सते सत भणिए दूसर आन न अवर पुरख पौ रतन सुनिए अमृत हर को नाम ले

0: जाकम त्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहत बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गह ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सद साधक अनेक तप जटा जूट भेख किए फिर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गौर रामदास को नाम की बढ़ाई दई गौर रामदास को।
1: श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा सतयुग जिन थ्रू पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस कमल माथे पर धरियंग अदख रूप जी रख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रहना थाप जोत जगतारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोह जुग गुर सेवा कर फल दहियं बंदे जो चरण सरण सुख पावे परमानंद।

ब्रह्मादिक शिव शांत मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत।